एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई। सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सो ही है।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਹਿਬੇ ਸਹਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਅਨਵਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਰਿਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਮਨਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੈਦਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵਹਿਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੇਲਾ ਸੀ ਕੁੰਭ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, 500-700 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਭਾਵ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
और ये वहम सी। और सच्चे सतगुरु कहिंदे नहीं भाई, ये तुहाडा पानी उत्थे नहीं पहुँचता, ये तुहाडा पानी इत्थे डिगी जांदा। ये गुरु महाराज किद्दां, ये बड़ी प्यारी साखी है, मैं तुहाडे नाल सांझी कर लगा। और हिंदू लोग जिहड़े सी अपने मत मुताबक चढ़दे वल नूं मूँह करके पानी सट रहे सन, ते सच्चे सतगुरां ने इन्हां नूं कुछ नहीं आख्या, इन्हां नाल कोई तकरार नहीं कीता। कीता की के आप लहिंदे वल नूं मूँह करके पानी सटना शुरू कर दिता। एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट देख। और उन्हें हिंदू पंडितों ने सोचा भी इनू माड़ा मोटा भुलेखा जहा पै गया, और इनू किसी ने जाके भी कोई जना इन्हों दसो भी भाई इधर नू पानी देईदा। ते हुण आप जोर ना झट रहे ने सूरज वालू, ते शहनशाह उन्नी जोर ना जिहड़े आ उह लहिंदे वालू झट रहे ने। फिर अक्सर जाके किसी ने मोढ़ों हिला ही दिता सतगुरां नू भी जवाना ये की कर रहा, पानी तो इधर नू सिटी दा, तू इधर नू सिटी जाईदा। हुण गुरु प्यारिओ चढ़दी जवानी सी, 35 साल की उम्र सी उस वेले धन गुरु नानक महाराज जी की, यह जदों की गल है। काला दाड़ा है सतगुरां दा, ते गुरु प्यारिओ जदों मोढ़िओ जाके हिलाया ते आखण लगे जवाना ये की करदा है। ते सच्चे सतगुरु कोई लड़े नहीं, कोई उदां की गल नहीं की, कहिंदे भी सज्जनों तुसी की करदे हो। गुरु महाराज कहिंदे तुसी की करदे हो, कहिंदे असी ते अपने पितरां नूं पाणी दिंदे आ, साढ़े पित्र है, असी सूरज नू सूरज देवते नू पानी दिने आ, ते साढ़े पित्रां तक ये पानी पहुँचता है। ते धन गुरां ने ये महाराज जी ने जवाब दिता, कहिंदे ठीक है तुहाडा पित्रां तां ही पानी पहुँचता, मुबारक तुहानू, पर मेरी इत्थे पंजाब दे विच खेती सुकदी आ, उह 6 महीने हो गए उत्थे बारिश नहीं पई, ते साडी फसल सुक रही है, मैं उत्थे पानी झट रहा, उधर नू पानी दे रहा। ताड़ियां मार के हसवे, कहिंदे जवान देखो किद्दां हले चढ़दी जवानी है, जवान हिल गया लगता है। पंडितां ने झुरमुट पा लिया, कहिंदे जवाना ये पहली बार आया, तैनूं पता नहीं भी साडे धर्म दे कुछ जिहड़े असूल आ, भी तेरे इत्थे लहिंदे वल नूं तूं पानी सट रहा, ते नाल आख रहा कि मेरी खेती सुक रही, तेरा खेती तक पानी पहुँचू, कित्थे गया तुहाडा खेत जिहड़े कित्थे आ। ते सच्चे सतगुरु कहिंदे मैं अपने खेतां दे बारे दसां भी मेरे खेत कित्थे आ, भी तुसीं दस दोगे भी तुहाडे पित्तर कित्थे आ, जिथे तुहाडा पानी जांदा है उह किड्डी कु दूर है। कहिंदे करोड़ां मील दूर है, सूरज तक पानी जांदा साडा, उत्थों पित्तरां नूं गाह सप्लाई हुंदा, और करोड़ां मील दूर है, पता सूरज इत्थे नहीं है। ते सतगुर कहिंदे जिहड़ी मेरी खेती है ना, उह इत्थों तकरीबन 350-400 मीलां दे उत्ते पंजाब दे विच है, कहिंदे उत्थे पानी पहुँचू। सतगुर कहिंदे बस मैं यही तुहानूं पुछणा चाहुंदा भी तुहाडा इत्थे करोड़ां मील दूर तुहाडा पानी पहुँचू, जे तुहाडा नहीं पहुँच सकदा ते गुरु प्यारिओ पुछदे भी मेरा भी की पहुँचना है, जे तुहाडा पहुँच सकदा ते भी मेरा भी पहुँच सकदा, जे तुहाडा नहीं पहुँच सकदा भी मेरा भी नहीं पहुँचूगा। हुण सत्ते सतगुरां दा समझाउण दा तरीका बा कमाल सी, मैं कहिंदा ब्राह्मण लोग चंगे सी, वह मन गए सच्चे सतगुरां दे चरनी लग गए, कहिंदे बाबा अज तक ते असीं भुल्लां ची फसे रहे, अज तक यही सुणदे आए हाँ भी सूरज नूं पानी दईए साडे पित्तरां तक पहुँचदा। ते महाराज कहिंदे नहीं, ये फोके वहमां भरमां पखंडां दे विच फसण दा कोई फायदा नहीं, ये कर्म कांड ने, धर्म दे नां ते कीते हुए कर्म ने। सतसंग जी कई बार बंदा सच बोलदा है ना, हुण कल्ले सन गुरदेव पातशाह उहनां दे नाल भाई मरदाना, ते हिंदुआं दे गढ़ दे विच जा के ये गल कह देनी भी ये पित्तरां तक पानी नहीं पहुँचदा, गुरु प्यारिओ अपने आप नूं खतरे दे विच पाउण वाली गल सी। कई बार मेरे वर्गा स्टेज के उत्ते कई बार बंदा सोचता भी अज सच बोलते हैं, कई बार सच बोलण का हमियाजा भुगतना पैंदा, कई बार 100 बार माफिया मंगनिया पैंदियां, चलो जी मेरे को उदा ही कहा गया, ये मेरे मन दे विच ये नहीं सी, मैं आ सोच के कि इदा माफिया मंगनिया पैंदियां, कई बार सच बोले दियां, पर शहनशाह धन गुरु नानक देव महाराज सच बोलते ने, चोड़ दे नगारे दे उत्ते सट मार के कहिंदे ने किसे दी परवाह नहीं करदे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि यह हिंदुओं का गढ़ है, ये मेरे गल पैणगे, ये कुछ ना कुछ कहणगे, इत्थे लड़ाई फसाद हो सकता है, पर शहनशाह सच्चे सतगुरां दे चरणां दे हिंदू वो ढह पै, कहिंदे बाबा माफ करी सच्ची असी अज तक अणजाण रहे। गुरु प्यारिओ सच्ची गल है, जे वो लोग सतगुरां दे चरणी लग सकते वहमां भरमां पखंडा चो, तो सिख नूं वी चाहीदा कि असी किसे तरह का कोई भरम ना करिए, असी किसे तरह का कोई वहम ना करिए, शहनशाह दी पवित्र गुरबाणी दे नाल जुड़िए। हुण सच्चे सतगुरु इत्थों बहुत इलाके दे, मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा तुहानू हरेक इलाके दे विच जिथे सतगुरु कहे मैं दसण दा यतन करांगा। हुण मैं
गुरु प्यारियो जगन्नाथपुरी ले जाना चाहना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा दे विच समुंदर दे कंडे दे उत्ते बड़ा पवित्र पाक अस्थान है हिंदू भरावां दा। ते ए जड़ी बंगाल तो ट्रेन जांदी है एक नागपुर में और उहदे उत्ते इस समुंदर दे कंडे दे उत्ते उस जगह दे उत्ते स्थित है। हुण प्यारियो जगन्नाथपुरी दा मंदिर है, जगन्नाथ दरअसल उत्थे एक मूरत है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ कृष्ण जी नूं कहिंदे ने जगन्नाथ, और उत्थे ओ मूरत अस्थाई कीती हुई है। ते हर साल हाड़ वदी दो नूं रथ यात्रा कढ़ी जांदी है। हुण जिथे सानूं अपने धर्म बारे ज्ञान आ होना भी चाहीदा, ते थोड़ा जिहा जे दूजे दे बारे भी पता लग जावे ते इहदे विच कोई माड़ी गल नहीं है। स्टडी करिया पता लगता है कि उत्थे हुण गुरु प्यारियो जे सानू कोई जगन्नाथपुरी का पुछे तो घट्टो घट सानू पता तो होना, सी स्टेजां दे उत्ते बोलदे घट्टो घट सानू पता होना चाहिए जगन्नाथपुरी दे विच है की है। उत्थे कृष्ण जी की एक मूर्त है और उस मूर्त का हर साल हाड़ वदी दो नू उहदी रथ यात्रा कढ़ी जाती है, और वह जिहड़ी रथ आ ना जिहड़ा वह 48 फुट उच्चा है और उहदे थले 16 पहीए लगे हुए आ, दो रथ होर ने, एक भदर जी का ते एक बलवान जी का। हुण गुरु प्यारियो ये रथां दी अलग अलग, जिहड़ा रथ भदर दा है उहदी जिहड़ी हाइट आ वह 43 फुट आ, उहदे हेठां 12 पहीए लगे हुए आ। ते जिहड़ा दूसरा एक तीसरा रथ है उहदी 44 फुट हाइट है ते उहदे हेठां 14 पहीए लगे हुए आ, और हर साल ये रथ यात्रा कढ़ी जांदी है। मुबारक उहनां वीरां दा अपने कोई इतिहास है और उहदा करके वह रथ यात्रा कढ़ने अपने धर्म की प्रचारक फेरी भी करते हैं। तो गुरु प्यारियो इस रथ की जिहड़ी मैं तुहानूं घटना दसण लगा ना, जिहड़ी विशेषता है, कहिंदे जिहड़ा जगन्नाथ का रथ है कृष्ण का रथ है जिहदे विच उहनां दी मूर्त सुभायमान की जाती है रखी जाती है। हिंदू सज्जणां दे मनां दे विच एक वहम है कि जिहड़ा उस रथ दे हेठां आ के अपनी जान दे दे उहदी सिद्धी मुक्ति हो जाती है। वहम है, इदां हो सकदी है भला? नहीं हो सकदी। हाँ, उस रथ दे हेठां आ के अपने शरीर त्याग देवे उहदी मुक्ति हो जाती है, और इदां दा एक वहम जिहड़ा ना कांची दे विच बनारस दे विच भी सी, और एक खूह सी पटिया खूह दे विच एक लोहे का आरा लाया होया सीगा, और ब्राह्मण ने प्रचार किया होया सी भई जिहड़ा भी सज्जन कोई प्रेमी अपनी धन दौलत इस्त्री बच्चे इस्त्री तक धियां पुत्तां तक ब्राह्मण नूं दान करके इस आरे दे नाल चिर जावे उहनूं भी मुक्ति हुंदी है। इह सी इतिहास। ते सच्चे सतगुर इस जगह दे उत्ते जांदे ने, इन्हां दा भरम दूर करदे ने। और गुरु प्यारियो साडा उत्थे दा इतिहास पता की है कि शहन शाह धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इत्थे आरती उचारी सी, जिहड़ी आरती दे गगन मै थार रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूम आलो पवन चवर करे, इस जगन्नाथपुरी की धरती दे उत्ते उड़ीसा दे विच गुरु महाराज जी ने आरती उचारी सी, और इन्हां लोकां नूं इस वहम ते भरम दे विचों सतगुरां ने कढ़िया सी। सो इस तो अगे शहनशाह इन्हां जंगलां विच दी हुंदे हुए कुछ भीलां दा एरिया सी, द्रावड़ लोग इत्थे रहिंदे सी, गरीब लोग जिहड़े दर असल हिंदुस्तान दे असली वारस सन ना वह द्रावड़ लोग सन उत्थों दे। ते प्यारियो जिहड़े आरिया लोग जदों भारत दे विच आए इन्हां लोकां गरीब लोकां नूं कुट मार करके ते जंगलां दे विच भजता, अज जिहदा गोरे आ के इत्थे दे जिहड़े असली वसनीक सी रैड इंडियन उन्हां नूं कम्मां कारां तो वेले कर दिता, गुरु प्यारियो नशियां दे उत्ते ला दिता, जो धक्का इत्थे दे रैड इंडियनां दे नाल होया इत्थे इदां ही आरिया लोकां ने जिहड़े पंडित ब्राह्मण आरिया लोग सन उन

सास मानस का फल घट मह सास सास गए काया ढल पाए ताकै पाछ कोय न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमह नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सच नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारण हर नाम सिला संतोख।

0: अगन उदर मजा तन बनया लहू तो बिंद तो। फिर गुरबाणी खुलासा कर दी है मां की रखत पिता बिंदारा, मां दा लहू है पिता दा बिंद है। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, बहुत सारिया पंक्तियां। प्रश्न पैदा होंदा है खून किवें बनदा है, रोटी तो बिंद किवें बनदा है, रोटी तो और किस तो बनदा है। खून की है रोटी, बिंद की है रोटी, रखत बिंद कर निमया, ये तन निमया है बने है लहू तो बिंद तो। रखत बिंद कर निमया अगन उदर मडा, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर रखया, बाहर लागी माया, ये खून तो बने है बिंद तो बने है, खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है, तन बने है भोजन तो, तन बने है रोटी तो। अगर ये बनया रोटी तो है तो जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते, बिना रोटी तो जीव ही नहीं सकता। तन नूं जन्म दिता है भोजन ने, ते तन जीवदा भी भोजन दे आसरे ते, ये भी मैं अर्ज करा। गुरबाणी ने चार हस्तियां नूं महान पूजनीक आख्या है। केड़ियां चार? भगत कबीर जी दा बोल है, धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग है, धनता दे योग है, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगदा है, रब भी चंगा लगदा, नहीं ते दोवें नहीं चंगे लगदे। कबीर खुद कहंदे ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे, एले अपनी माला। भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नूं समझया कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहा है, रकत बिंद करने में आ, तन किवें बनदे है लहू तो बिंद तो, ते लहू ते बिंद किवें बनदा है रोटी तो और किस तो बनदा है, भोजन तो। ये तन रोटी तो बने है, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जीव ही नहीं सकता। जीवन भर मनुख नूं जिहड़ी प्रबल चिंता हुंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करदे आ, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਰਤ ਕੀ ਬਾਂਦੀ ਜਗ ਫਿਰੇ ਚਿਤ ਬੰਧਨ ਅਧੀਰਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਿਜ਼ਕ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਰਿਜ਼ਕ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰਨ ਮਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕੀ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ ਹੇਠਾ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਖੁਰ, ਕੋਈ ਗਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਖੁਰ, مزن اور آ کے دفتر را کہ پیشے استفل اے زد کل کو ند پستان مادر را. سادی کہندا ہے بچے دا جنم بعد دے چوندا ہے ماں دے استنا دے چ رزق دودھ پہلے بن جاندا ہے کہ پیشے استفل اے زد تفل کہندے نے بچے دا کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستان مادر را ماں دے پستان دے چ ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے بن جاندا ہے بچے دا جنم بعد دے چوندا ہے. اتھوں تو سکشا کیوں نہیں لیندا رزق پہلے ہے جیو بعد دے چ ہے جیون بعد دے چ ہے. گروانی پھر اس طرح بیان کر دیئے پہلے دیتے رزق سنبھا پاچھے دیتے جنت اپاہا. رزق پہلے پیدا ہوندا ہے جنت بعد دے چ پیدا ہوندا ہے جیو بعد دے چ پیدا ہوندا ہے. گروانی پہلے دیتے رزق سنبھا پاچھے دیتے جنت اپاہا. منکھ نو اس تے بھروسہ نہیں آؤں اس گل تے بھروسہ نہ کرنا مانو پرماتما تے بھروسہ نہیں ہے اور واقعی پرماتما تے بھروسہ نہیں. پتہ ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج کی کہندے نے جا کے ہردے بسواس پرب آیا تت گیان تت من پرگٹ آیا تت کال تت اسے وقت ادھر بھروسہ بج گیا ادھر منک دی سمادھی لگ جاندی لین ہو جاندا برہم گیان پرگٹ ہو جاندا تت گیان اس من پرگٹ آیا جان کے ہردے بسواس پرب آیا. جتھے بسواس پورا بج جائے وشواس ڈولدا ہے بھروسہ ڈولدا ہے اور ساری زندگی ڈولدا ہے. ارداس کرنا سدگر سانو سکھاندے نے ڈولن تھے راکھو پربھو نانک دے کر ہتھ کی ڈولدا ہے بھروسہ صدق ڈولدا ہے روز روز ڈولدا ہے بھروسہ نہیں بجدا. آج ملیا ہے پتہ نہیں کل ملنا ہے کہ نہیں مینو ملیا ہے پتہ نہیں پتراں نو ملنا ہے کہ نہیں پتراں نو ملیا ہے پتہ نہیں پوتریاں نو ملنا ہے کہ نہیں. زندگی لنگ جاندی ہے رزق دی چنتا چ بغور مطالعہ کرنا او دا ایک کارن ہے. منک جیوندا جو تن تے تل تے پیا تے جی تن دے تل تے جی رہا ہے تے تن تے روٹی ہے بھوجن ہے بنیا بھوجن تو ہے جیوے گا بھی بھوجن تے آس بنیا روٹی تو ہے زندہ بھی رہے گا روٹی دے آسرے. ہن میں عرض کراں اے من روٹی تو نہیں بنے اے جیو آتما روٹی تو نہیں بنے اے سنسار دا حصہ نہیں ہے اے تن روٹی تو بنے سنسار دا حصہ. اے ٹھیک ہے چونکہ پربھو نے ہر منک دا رزق او دے کول نہیں بنایا لبنا پیندا ہے اس واسطے منک نے بڑے ادم تے اپرالے کیتے نے اور اس تو بڑی تعمیر ہوئی ہے ساری تعمیر سنسار دے چ منک کولوں کروائیے دو روٹیاں نے. اے بھی میں عرض کرتا ریلاں نے موٹراں نے گڈیاں نے سڑکاں نے محل نے ماڑیاں نے فیکٹریاں نے کارخانے نے مسئلہ تے دو روٹی دا اور ہے کہ ساری بجدا جتھے منک ہے اتھے ہی روٹی آندی پھر منک نے کچھ بھی نہیں کرنا سی روٹی لبنی پیندی ہے. جہاں دانے ہیں تہاں کھانے ہیں نان کا سچ اے پرماتما نے ساریاں دے دانے کھلیر رکھ دیتے ہیں لب اپنے دانے لب لے اپنا چوگا لب اپنے پشوان دے دانے بھی کھلیر دیتے ہیں پنچیاں دے بھی کھلیر دیتے ہیں لب دے پھر دین پنچی ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਦਾਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਦਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਰੋਟੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਤਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦੀ। ਅਸਤਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਖਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਛੇ ਖਾ ਲੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਹਾਰ ਰੋਗ ਆਹਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਭੁੱਖ ਹੈ, ਖ खाना पीना अमृत है, एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ां नूं पूरा करेगी। भुख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहिंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं, 90% आहार रोग खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है। खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान किया है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे, निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं, दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने। मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेगी, एक बुरकी शरीर दे च अनर्थ पैदा करेगी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नू रोगी बनाएगा, मन नू विकारी बनाएगा, शक्ति अधक बनेगी, उदी डोल नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है। पर भुलेखे करके तन दिया लोड़ां नू मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उहदे नाल की आउंदा है, तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं, की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में था, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें इकट्ठे रहणगे, लोभ ते पाप दोवें इकट्ठे रहणगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तो भी लोभ शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह दईए, लखां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है, भुखा है, भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल सृष्ट को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी का दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है, तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया। कहो कबीर, ए राम की अंश, उते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। ये कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकता है तो फिर लंगर पानी की कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आती। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करता। इस चक्कर च ना पैना। ये मन वास्ते, ये मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पे, पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावा, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़ता। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या होया भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़ता रहे बाणी। कहिंदे ने मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने। मैं तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चै, चिंता दे चै, हंकार दे चै, विकार दे चै, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है। जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन विच भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा, नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने, जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी। हर वक्त मनुख भिखारी है, पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शैन शाहां दा शैन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इस ते भी शुकराना कीता। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी, तन दे तल ते। तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़े होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहा है। वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनूं प्रेरदे आ नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, कहिंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहिंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तन धोने जबान दे च ओह रस लैंदे ने। ओह बारीक तन तो जोर दे बुखार करके कमजोर हो जांदे ने, शीतल हो जांदे, रस लैण दी उहनां च समर्था नहीं रह जांदी, कम नहीं करदे। तो बंदे नूं भोजन दा स्वाद नहीं आउंदा। जदके है स्वादी जो तंतु स्वाद मान सकते ने वो रोगी हो गए, रोग करके कमजोर हो गए, शिथिल हो गए, स्वाद नहीं आता। कहिंदा स्वाद नहीं है, भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आवना इस गल दी पहचान है तन रोगी है, बीमार है। हुण दूसरा पहलू, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी नहीं। किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौं नूं दसदा फिरदा अज ते मैं खा रोटी खाण दी वेल नहीं मिली, नहीं खाधी, अज ते भुखे रह गए। घर वाले भी चिंता करदे ने, महीना महीना नितनेम नहीं कीता, गुरुद्वारे नहीं आया, जप नहीं कीता। ना घर वालियां नूं अफसोस, ना इहनूं अफसोस, क्यों? ना घर वालियां नूं भुख लगदी है भजन दी, ना इस नूं लगदी। घर वाले भी रोगी, इह भी रोगी। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पै जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं। महाराज कहिंदे सारे ही रोगी ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। ते रोगी दी पहचान की होवेगी, खुद फैसला कर लेना। इहनूं सादी कहिंदे ने तो खुद बा मुनसब सुध, अपना फैसला आप कर, दूजे तो ना करा। तू की है, दूजा की जानदा तेरे बारे, तेरे विचार की ने, तेरी सोचनी की है, तेरा चिंतन की है, दूजे नूं की पता, उते चित्र गुप्त है, अपना फैसला आप कर। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तू सोचदा रहना है तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर विचार चलते रहने तू ओ है। जो तू दिखाई दे रहे हैं ते दुनिया जो कुछ तेनू जान दिए ते कह दिए तू ओ नहीं है, जो तेरे अंदर चिंतन चलता रहिंदा तू ओ है। कहिंदे ने एक कोई मनुख सारी दुनिया नू देखदा है, सूरज चंद तारियां नू भी देखण दी इच्छा है, उत्थे जाण दी भी इच्छा है, अपने आप नू नहीं देखदा, नहीं देखदा। हर मनुख सारियां दे ते नेड़े होना चाहुंदा है, अपने नेड़े ने। चलो मैं इस तरह भी बयान करा, एक पति अपनी पत्नी दे जितने नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। पत्नी बारे बहुत कुछ जानदा है, उहदे गुण अवगुण सुभा सब कुछ जानदा है, अपने बारे कख भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं पता। ते हुण मैं इंज भी अर्ज करा, एक पत्नी पति बारे बहुत कुछ जानदी है, बड़ा कुछ पता है, उहदी हर कमजोरी दा, उहदे हर अवगुण दा, उहदी हर खूबी दा, उहदे हर स्वभाव दा पता है, अपना कख भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता। एक पिता अपने पुत्र दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक पुत्र पिता दे जितना नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। एक भरा जितना भरा दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं है। जद अपने तो ही दूर है, आई दूर, बिल्कुल दूर, तो अपनी असलियत का पता नहीं चलता। अपनी असलियत का पता अपने नेड़े आन का मतलब अपने विचारां दे नेड़े आवना, अपनी सोचनी दे नेड़े आवना, अपने चिंतन दे नेड़े आवना। मैं की याद करता रहना, मैं की सोचता रहना, मेरे अंदर किहड़े विचार चलते रहते। अगर कोई इस नूं देखण वाला है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने गुरमुख है, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। इते गुरमुख है, इते मान गुरमुख है, इते अपने नेड़े आ गए, अपने विचारां नूं देखण लग पे। ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100% ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਦਾ, ਉਸਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਕਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਨਾਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਪਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा, जिहड़ा कम असी पूरे मन नाल करदे अंदर लिखिया जाता। अनर्थ अंदर बड़ा लिखिया होया क्योंकि अनर्थ पूरे मन नाल करदे आ, गलतियां पूरे मन नाल करदे आ, धोखा फरेब छल कपट पूरे मन नाल मनुख करदा है, बड़ी सावधानी नाल करदा है, अंदर बड़ा भारी अनर्थ है। कर कर करना लिख ले जा, जितना मन दा भाग जागया होया है। विद्वान कहंदे ने एक भाग जागया नौ ते सुते पैन, सिर्फ एक भाग। वो जिहड़ा एक भाग जागया होया है उसनू पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी नौ हिस्से जाग पैंदे। जागया होया मन भगवान हो जाता है, सुत्ता होया मन शैतान हो जाता है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण एक दो नुक्ते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पै है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै है तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै है, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पै है, बाणी जपण दे रस आण लग पै है, गुरुद्वारे आण नू उत्साह पैदा होंदा, उमंग पैदा होंदी है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है, अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हां वो उन्हां संस्कारां विच जीवे हां जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां विच जी रहे हैं, जी रहे हैं, लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे ही संस्कार ने। जैसे मन जुड़दा है नाम दे, कदों जुड़दा है जब भुख पैदा होती है, ये सारे संस्कार मिटदे ने, तो सारा संसार खत्म होंदा है। वही संसार साड़ा है, उसे अज तक जीवे होंदे हैं। मनुख नू पहली दफा अनुभव होंदा है जिवें मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहे हैं। स्याही भी छांदी है, एक नहीं मैनू सैकड़े अभ्यासियां ने कहा असी ते डर दे मारे छोड़ दिता है, नहीं कीता। कई चीख भी उठे ने, यह की होने लगे ते खत्म होने लग गया, पर कीता की जाए मन खत्म होने लगा है। अज तक हजारा तरह के जो अंदर संस्कार पे ने जिन्हां दे च असी जी रहे सी वह खत्म हो रहे हैं। एक नवी जिंदगी का जन्म आंदा है, पुरानी जिंदगी मिटदी है। इनू कहिंदे ने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया है साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती बनती है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा। संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदिया जी इस तन तो उच्चा उठ जांदा है, इसनों कहंदे ने जीवत मृतक, मुर्दे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रहिए, बौल ना बहु जल्द आया, स्वास्थ्य चल दे पैने, जीवदा पे है, जीवत मरे, मन दे तलते मर गया। आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत, लोभ आशत, काम आशत, जो बने संस्कार सन जिन्हां दे जी रहे असी, खत्म। जब खत्म होने लगती है, भय उसे तरह ही पैदा होता है जिमें शरीर खत्म हो रहा है, डर उतना ही लगता है जिमें शरीर खत्म हो रहा है। कई थो वापस मुड़ देने, एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासिया ने कह दिता मैनो कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है, असी तो छोड़ बैठे हैं, तो खत्म होने लगे सी। मैं ठीक है, खत्म होने लगे सी, अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वो खत्म होने लगी सी। ते जे किधरे डरदे ना भजदे ना, नवा जन्म हो जाना सी, फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी, मां भी रब का रूप दिखाई देना सी, पिता भी रब का रूप दिखाई देना सी, भरा भी रब का रूप दिखाई देना सी, पत्नी पति भी रब का रूप दिखाई देना। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई, सारा परिवार निरंकार का रूप दिखाई देना सी, ते सारा परिवार की सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देना सी। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद न अनूप, ए विश संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। जीवदा रहे तू पहले परिवार दे संसार दे, हुण तू जीवना सी निरंकार दे। जीवदा रहे अज तक तू पदार्थां दे, हुण जीवना सी परमात्मा दे। पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन, इते जमीन आसमान दा अंतर है। पहला जीवन वाकई खत्म होता है, द्विज दूजा जन्म होता है। तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिवें शरीर की मौत। चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया, तो मैं कह किधरे उस भय नूं एक पासे सुट देंदे, किधरे पहले बोध होंदा, बड़ा कीमती अवसर गवा दिता। तो जिन्होंने मैं दसिया कि कोई बने तो डरना ना, तो कई ने रोंदे हो आख्या खेड बनी ने नहीं बने, उदों डर करके मुड़ गए, वापस हो गए। तो मैं अर्ज करा, ऐसा महसूस होगा अगर कोई अभ्यास करता है मैं खत्म हो रहा, वो जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीव दे रहे हैं खत्म हो गए, एक नवी दुनिया का जन्म आता है। ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आती, ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहती है, महारस बनया रहा है, महा आनंद बनया रहा है। उसे नूं कह देंदे ने हुण असी संसार तो निकल के निरंकार दे चलीन हो गए, हुण पदार्थ तो निकल के गोविंद दे चलीन हो गए, गोविंद दे चलीन होके गोविंदा रूप हो गया, बूंद सागर दे चलीन होके सागर हो जाती है, अलग नहीं रह जाती, दरिया सागर दे चलीन होके वो सागर हो जाता है, गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जाती, वो सतलज ब्यास नहीं रह जाता, वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जाती, वो तो सागर हो जाता है। परमात्मा दे चलीन होके ना मनुख हिंदू रह जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, परमात्मा दे चलीन होके मनुख परमात्मा ही हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, जिस रब दे चलीन हो गया कबीर, ओ रब मुसलमान नहीं है, ओ रब हिंदू नहीं है। कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अम अजबे, नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है परमात्मा तैनो, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तू सारे थावां दे वसदा है, तेरा कोई एक मुलक नहीं, सारा ब्रह्मंड तेरा मुलक है। जैसे जब कोई परमात्मा दे लीन आउंदा है, ये सारिया दीवारां गिर जांदियां ने, भाषा की दीवार, मुलक की दीवार, मजहब की दीवार, जात पात की दीवार, तरह तरह के संस्कारां की दीवारां, ये सारिया गिर जांदियां ने, मनुख निरंकार का रूप हो जांदा है। उसे नू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पे करदे ने, गुर किरपा जय नरको कीने, ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद सिंह, ज्यों पाने संग पाने, जिस दिन बूंद सागर दे च लीन होंदी है वो ही जाने सागर हो गए, असीम हो गए, उन्हें नापी तोली नहीं जा सकते। असीम होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं असीम होना चाहता। महान होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नू परमात्मा नहीं मिलिया रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति है, जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, यह जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार का जीवन प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य नूं असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर, यही तेरी वार, घट भी तर तू देख विचार, इस अवसर नूं गवा ना दे गया, ये अवसर हथों चला ना जाए। वारी मिली, एक अवसर मिले है। भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी दा धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन सारिआं ते, बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन, ते असी उसका पूर्ण तौर पर यतन करिए, ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचार इस वक्त प्रवान करनिया, कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे की हाजिरी भर के दासा ने इतों फिर झांसी चले जाने, सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते विसाखी थे, फिर दासा ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज के 500 साल शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना है, अमृतसर, पटियाला, होर पंजाब के वक् वक् पिंडां विच 500 साल जयंती के संबंध विच दास ने हाजरियां जो है भरनिया ने, ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपने अपनी फुलां की महक लैके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दिती है, जो गुरु ने दिती है, सतगुर रहमत करन इन्हां दी कीर्तन दी धुनां दे नाल वो आप भी करते नाल जोड़न, ते थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको, ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी ले सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी, दूसरी रिश्ते जो ना है सारे दे सारे प्रबंधक थोड़े सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण कीता सारेयां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुक दी क्षमा, पते प्रवान करने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, तन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती तन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। तन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन

अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वड़िया करांगा, अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वड़ना है, अज तो मैं अपने विकारां नूं ज़बह करना है, अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं ज़बह करना है, मैं इस तरीके नाल धंधा बदल लिया। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने पर वो अपने विकारां नूं वड़दे ने, औगुणां नूं वड़दे ने, पापां नूं वड़दे ने, ते जो अपने पापां नूं ज़बह करन विच असमर्थ होया, जो अपने औगुणां नूं ज़बह करन विच असमर्थ होया, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं ज़बह करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहीदी है, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने, सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर आवार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नु मुखातब होके ही यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल देते उसकी घाड़त होवे, सच दी उसनु पान धार लगी हुई होवे, सच की काती सच सब सार सारे दा सहारा लोहा सच दा होवे, उदी धार सच दी होवे, छुरा सच दा होवे, ते ऐसा छुरा जे चलाइए अपने विकारां ते, ऐसा छुरा जे चलाइए अपने उस मन ते जो पापा नाल भरे होवे, तो साहिब कहिंदे तिसका कुट्ठा होवे सेख लहू लब निखत्था वेख। अगर इस छुरे दा कुठिया होया ए मन होवे तो फिर मन विचों सारा लहू निकल जाएगा, केड़ा लोभ दा, विकार दा, दुष्टपणे दा, वैर विरोध दा। किसे हद तक ये सही है कि जो अपने मन नूं ज़बह करन विच असमर्थ होए ने वो बाहर ज़बह करन दा कम करदे ने, जो अपने विकारां नूं कतल नहीं कर सके वो संसार नूं कतल करन दी कोशिश करदे ने, जो अपने मन नूं नहीं मार सके वो दुनिया नूं मारन दी कोशिश करदे ने, बाहरों कोई मारन दी कोशिश करे वो दुष्ट है, जालम है, पापी है, पर कोई अपने मन नूं अपने विकारां ते गुनाहां नूं मारन दी कोशिश करे वो संत है, वो भगत है, पूजनीत है, पुनीत आत्मा है। इस तरह दी पुनीत आत्मा सिंध देश पैदा हुई, जिसका नाम है भगत सदना। आम इतिहासकार कहते हैं कि आपका पिछोकड़ इस्लामी घराने नाल संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ भगत ऐसे ने जो मुसलमान ने, बाबा फरीद, सदना, सैन, बेखन इत्यादि, ये भगत मुसलमान घरानिया नाल संबंध रखते ने, लेकिन जब खुदा दा नूर अंदर प्रगट होवे ता मनुख इस भावना तो उच्चा उठ जाता है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह है राम के पिंड प्राण, ये शरीर अल्लाह दा है, ये प्राण राम दे ने, तो ऐसा पुरुष अल्लाह दी धुन अलापन विच राम दे गीत गाण विच संकोच नहीं करेगा। ये सारे भगत बड़े फराग दिल, रोशन जमीर, रोशन दिमाग हुए ने, और इन्हां भगतां विचों भगत सदने जी दा भी अपना एक खास स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आपका एक बड़ा ही पावन ते फिलसफे नाल पूरत एक शब्द है, जिस दिया अस्थाई पंक्तियां ने, तौ गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए जो जम पुग ग्रासे। साडे देश विच कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा है और आखिर सब कुछ कर्मा ते ही निबड़दा है, जैसे कोई कर्म करता है वैसे कोई उदा फल भोगदा है, भोगे बिना कर्म नाश नहीं आते। भारत का धार्मिक चिंतन, भारत का धार्मिक दर्शन बस इस विचार पे खड़ा है।

0: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਤ ਕੇ ਸਰੋਤੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ,
1: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਿਕ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ,
0: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਣਾ,
1: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਰ ਛਤਰ,
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ,
1: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੇ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਕਰ ਮਿਰਗਾਚ,
0: ਸਾਥੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ,
1: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਖਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਤਕ ਪਾਹੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੈਂ ਚਿੰਤ,
0: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ,
1: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋ ਜੰਤੇ,
1: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਸ,
1: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ,
1: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ,
0: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ,
1: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ,
1: ਕਈ ਜੁਗ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ,
0: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ,
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ,
0: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ,
1: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ,
1: ਸਦਾ ਹਰੈ ਇੱਕੋ ਨਿਤਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ,
1: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ,
1: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ,
0: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ,
1: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ,
0: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ,
1: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ,
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ,
0: ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਪ ਉਤਾਪ ਨਹਾਰਾ,
1: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਵਾਰਾ ਵਾਰਾ,
0: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ,
1: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ,
0: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ,
0: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ,
1: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ,
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ,
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ,
1: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ,
0: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ,
1: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ,
0: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ,
1: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ,
0: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ,
0: ਇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਈ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ,
0: ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ,
1: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ,
0: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ,
1: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ,
0: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ,
1: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ,
0: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ,
1: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ,
0: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ,
1: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ,
0: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼,
1: ਨਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗਦੀਸ਼,
0: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ,
1: ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ,
1: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ,
0: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ,
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਉਬਕ ਆਸ ਪਿਆਲ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ,
1: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
0: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ,
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਕੀਠ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ,
1: ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮਿਆ ਭਰਮੀਆ,
0: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵੰਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ,
0: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ,
1: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ,
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ,
1: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ,
0: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ,
0: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ,
1: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ,
0: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ,
1: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ,
0: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ,
1: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ,
0: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ,
1: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नकपाती होवत स्वान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो होवत बिष्टा का जंत
0: आप उसको कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे भोजन परमावे
0: धन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
0: धनवंता हुए कर गर्भावे
1: तरण समान का चंग न जावे
0: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: और भीतरता का हुए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
1: सोजन नानक दरगाह परवान
0: कोट कर्म करे हों तारी
1: शरम पावे सगले बरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगाह को कैसे गवे
0: आप को जो भला कहावे
1: किसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कश होए
1: जब इस को सुख नाही कोए
0: जब यह जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब धारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: रब कृपा से बंधन टूटे
1: गुरु को साधना नानक हो छूटे
0: सहस कटे लख कोट तावे
1: रतन आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नेत्र तावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: प्रभागी किसे प्राप्त होए
0: कर्म करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्म करावन करने हार
1: इसके हाथ कहां विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभु सोए
0: जो कुछ पीनो सो अपना रंग
1: सब ते दूर सब हूं कै संग
0: दूजा देख करे विवेक
1: आपे एका पै अनेक
0: मरे न बिनसै आवे न जाए
1: नानक सधी रह समाए
0: आप उपदेशै समझे आप
1: आपे रचिया सब के साथ
0: आप पीनो आपन विस्तार
1: सब कुछ उसका हो करने हार
0: कोसते भिन्न कहो किश होए
1: हाथ अंतर एक सोए
0: अपने चलित आप करने हार
1: गौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुर प्रसाद के न बखियानी
0: सच सच सत सब कीना
1: कोट मत है कने बिरले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट कट सुने सर उन बखियानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
1: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
0: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
1: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
0: संत के दुखन आर जा कटे
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत के दुखन सुख सब जाए
1: संत के दुखन नरक में पाए
0: संत के दुखन मत होए मलीन
1: संत के दुखन शोभा दे ही
0: न संत के हथे को रखे न कोई
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग नंदक भीतर
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जलाए
1: संत के दुखन सब को छले
0: संत के दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच निचाए
0: संत दुखी का थाओ को नाही
1: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक खन टिक न पाए
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत के निंदा दुख में दुख
1: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा पवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लग
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख न सुख ते तरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी हर बीज ते टूटे
1: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
0: संत के दुखी को उद्यान परमाई है
1: संत का दुखी उजड़ पाई है
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
1: अपन बीजा पे ही खाए
0: संत के दुखी को अवर न रख न हार
1: नानक संत भावे ता लय उबार
0: संत का दुखी यूं बिल लाए
1: ज्यो जल बे हून मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: ज्यो बवाड़ तेरे खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन का तुर ही पया
1: नानक जो तिस भावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइये
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
0: संत के दुखी की पूजे न आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्टे कोई
1: जैसा भावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसकी हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रब की उसत करो दिन रात
1: तिसे त्यावो सास ग्रास
0: सब कछ वर्त है तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस अपना नाम दे
1: वडपा की नानक जन से श्लोक
0: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राई
1: एक का आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी
0: मनुख की टीक बिरथी सब जान,
1: देवन पौ एक है भगवान,
0: जिसके दिया रह अगाहे,
1: और न तृष्णा लागे आए,
0: मारे रखे एको आप,
1: मानुख कै कृष्णा ही हाथ,
0: जिसका हुकुम भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक बिघन न लागे कोए,
0: उसत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो भेक ठाकुर का रंग,
1: सह संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार्ग गोविंद,
1: मिटा पाप जपिए हर बिंद,
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: अदर ज्ञान नानक उजल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: चेतन मंतक नि संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: एतो तकियो सोजी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया,
1: नानक तने निरंजन जाने,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सात संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
0: अन दिन कीर्तन केवल बखियान,
1: सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जम की फसा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक दिशा न लागे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे,
1: सो संत सोहेला नहीं डुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सा तैसा दृष्ट आया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोदत सोदत सोदत सीजया,
1: प्रसाद तत् सब पूजे,
0: जब देखो तब सब शमूल,
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
0: मैं किस जन मैं न किस मरे,
1: अपने चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब
0: आपे आप सगल में आप,
1: जुग तरच था था,
0: अविनाशी ना ही किस खंड,
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए था नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सो पावंत,
1: सगल संसार उदरे तन मंत,
0: प्रभ के सेव सगल उदारन,
1: प्रभ के सेवक दुख विसारन,
0: आपे मेल लय कृपाल,
1: गुर का शब्द जप भय निहाल,
0: उनकी सेवा सो ही लागे,
1: जिसनो कृपा करे बट भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
1: सदा सदा बसे हर संग,
0: सह सुपाई हो वह सो हो,
1: करने हार पछाने सोए,
0: आपका किया जन मीठ लगाना,
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना,
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
1: सोखन दान।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: बार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर तन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: संत कमाप होत उदहार
1: आप त्रैलोक का निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आज जाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रकट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए फल तिस जन कै मुख भनी
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सब ते ऊच तांकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सब ते

रामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इना दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नू समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनू कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे है उन्हों हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनु झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नू पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारीए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जित्थों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नू जन्म देवे, श्रद्धा नू जन्म देवे, विश्वास नू जन्म देवे, भावना नू जन्म देवे, तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गौ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जाता। रस्ते ताहुन बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए।

0: भराई ले उदक ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते बिठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु का एक नाम बिठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने। बिठल नाम का एक मंदिर भी है, बिठल मंदिर पंडरपुर देश, और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमासी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ बिठल दस मैं की करा, मैं पानी भरे है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा की पानी पवित्र नहीं है। क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे चने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने। जन्म उना दा पानी दे च, जीवन उना दा पानी दे च, मरण उना दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने, जेदे चो 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने, जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकता, ए ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए, और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है, ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है, गालबन 11 साल दी उम्र दे च, छोटे ने, बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है, ते पुत्र नू समझाया है, ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने, ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जी टोकरी लेके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने, ते फुलां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देख रहे हैं, एकदम हैरान होए कि शहद दिया मक्खियां भी फुलां दे चों रस कढ़ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने, इन्हां दे चों रस ते शहद दिया मक्खियां कढ़ के लै जांदियां, तितलियां कढ़ के लै जांदियां। लिहाजा इन्हां फुलां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावा, जबकि इन्हां फुलां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने, तितलियां पहले ही कर लेंदियां, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लेंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला, ठाकर की हो पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे, बीठल भेला काहे करो। हु बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहा ले चराओ, अवर न फूल अनूप न पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तेनू इशनान करावा, वो ते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने, फूल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरिया ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नू ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरा नू पिलाना, तो अपनी माता नू आख्या गऊ चो दिओ, दुध चाहिदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चुंगण लग पिया है, ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नू कहंदे ने, पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहन लगे, मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरा नू नहीं लवाना। क्यों आ नीले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बितारे ओ बछरे, बिठल भेला काहे करूं। हे बिठल दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा। उन्हें पवित्र कर देता है। थना दे दूध त बछरे थनो बिटा रहे हो। भगत रविदास जी महाराज कहने ने, आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को न वेत करो, पर पहले दूध बिटा रहे हो बछरे, बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनु पहले भोग लवाना सी, पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना दे ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दूध नहीं रखया गया, दूध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे, पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे आप पए ने, ते आप दे अंदरों अमर ध्वनि इंज उठी, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनु इशनान करावा, ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल देच इशनान कर रहे हैं, मैं तेनु की इशनान करावा। हे प्रभु, जद मैं तेनु सोचया, तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा, ता ए भी विचार पैदा होए, इशनान ते उसनु कराया जांदा है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहिब कहंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं। सड़ा तन मैला, सड़ा मन मैला, हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनु तां करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनु की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनु की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल देच तू, मच्छी देच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनु फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनु की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनु दूध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दूध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू, बछड़ा तू, दूध तू, तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चल रहा है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेवया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चो, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मोहब्बत, दीदा एम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनु बुता दे चो, और मुस्लिम लभदा है तेनु खानकाह दे चो, पर हर को जा जामे मोहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तो ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीद, तो फिर किथे है। जे मंदिर ते मस्जिद च नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहते हैं सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहे है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है। राम ही बोल रहा है पशुआ विच, राम ही बोल रहा है पक्षियों विच, राम ही बोल रहा है मनुखा विच, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां विच, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन विच, बदलां दे गर्जन विच। और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कोयल दी कूह विच, बुलबुलां दे चहचहाण विच। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर, रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है। ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदे ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर देंगे, बस आरंभ कर दिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक। जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनू खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने, गुरुमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे। और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दे च लीन कीता, बिठल दे च लीन कीता, और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु दे च लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Family Care Pharmacy.
3: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से

शावजी महाराज दे छाए अनेक भगत जिन्हां विचों श्री जयदेव जी महाराज दा अपना एक खास स्थान है। अनंत भगतां दी बाणी अनंत भाषावां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है, क्योंकि भगत देश दे वख-वख प्रांतां नाल संबंध रखदे सन। श्री जयदेव जी महाराज बंगाल दे केंद्री नामक पिंड विच जन्मे, जिला भीम बेहरू सी, और आप ठेठ बंगला भाषा विच ही माहिर सन। विद्या आपने संस्कार चूंके ब्राह्मणा दे सन संस्कृत दी हासिल कीती और संस्कृत दे महान पंडित बने। समस्त देश देच आपने भक्ति भाव दियां लहरां छड़ियां। आप ग्रस्ती सन, आप दी पत्नी दाना पद्मावती सी। समस्त तीर्थां ते रटन करदे आया, प्रभु भक्ति दे गीत गांदे आया, लोकाई नूं रब नाल जोड़दे रहे। चूंकि आप बंगाल दे वसनीक सन, ते बंगाल दे लोकी गीत संगीत नाल बहुत प्यार रखते ने। विरासत चो मिलिया सी गीत ते संगीत। आप दा एक महान ग्रंथ है, जिस ग्रंथ दा नाम भी है गीत गोविंद। कहिंदे ने ते रोज उठ के गीत गोविंद दी छंदा बंदी करनी लिखना, ये आप दा रोजमर्रा दा कर्म बन चुकिया सी। इस ग्रंथ नू आपने लिखे है महाराष्ट्र दे शहर पंडरपुर दे विच। कहिंदे ने एक दिन ऐसा होया, जद ग्रंथ संपूर्ण होण ते आया है, ता आप दी लिखण शक्ति कुंद होंदी गई। जदके पंडरपुर दे महाराजा ने आले दुआले दी तमाम संगतां नूं भगत प्रेमियां नूं ए कहला भेजा सी कि पूर्णमाशी वाले दिन बिठल दे मंदर विच गीत गोविंद नाम दे ग्रंथ दा प्रकाश होवेगा, और इस दे गीत जो भगती रस नाल भरे होए ने संगतां नूं भगवत प्रेमियां नूं सुनाए जाणगे। पूर्णमाशी विच सिर्फ दो दिन रह गए, गीत गोविंद देवी सिर्फ दो छंद रह गए। लेकिन आज सारा दिन मेहनत करके आप लिखण दी कोशिश करदे रहे, लेकिन जयदेव दे दिमाग विचों कोई गीत दी लैन ना आई ते कलम लिखण विच असमर्थ होई। भाई साहब भाई गुरदास जी इस प्रसंग नूं अपने पौणी विच इंज कलमबंद करदे ने, प्रेम भगत जयदेव कर गीत गोविंद सहज धुन गावे, लीला चलित वखाण दा अंतर जामी ठाकुर भावे, पर अखड़ इक नावड़ो बन पुस्तक संदया कर आवे, रोज निता प्रति अमृत वेले उठ के ग्रंथ नू नाल लै जांदे सन। नदी तट ते इशनान करन तो बाद अपने रोजमर्रा दे नितनेम तो फारग होके लिखदे सन, और जद काफी लिख लेंदे सन ते जद थक जांदे सन ता आप इस गीत गोविंद नाम ग्रंथ नू सिर ते चुक के कर लिया हुंदे सन और रोजमर्रा दे कर्म विच मशहूल हुंदे सन। लेकिन अज निराश लौटे, अज पंक्ति नहीं बनी। गीत गोविंद नू संपूर्ण करना है, पर दिन भी सिर्फ एक रह गया, और गीत गोविंद देच सिर्फ एक दो पंक्तियां ही रह गई हैं जो श्री जयदेव दे दिमाग देच उभर दिया ने और कलम लिखण देच असमर्थ है। ऐसी ये कोई गैबी लीला वर्ती निराश होके जद घर लौटे ता आपनी पतिवर्ता सुपत्नी पद्मावती ने पूछया कारण, ता जद सारा कारण दसया तो पति दे दुख देच
पत्नी भी शामिल हुई। और हकीकत है, जब कोई महान दार्शनिक, महान कवि किसे उलझन दे फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता, या उसके दिमाग दे गीत दियां लहरां नहीं निकल दियां, तो जिहड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होंदा है, ये वो कवि ही जानदा है, ये वो ही दार्शनिक ही जानदा है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौं गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया, पर पत्नी ने आख्या नहीं, तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उनू निभाओ, प्रभु भक्ति करो, नितनेम करो, फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे, आप रहमत करनगे। किन्ने ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने, सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे, पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं, स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां, सुनहरी स्याही दे च लिखियां, जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए, इशनान नहीं कीता, नितनेम नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती। तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन, कहन लगे पंक्ति फुर गई सी, लिखण लई वापस।

भोजन छक रही है। ते जयदेव कहंदे ने, मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी, पर तू भी भुल गई। मैनू खिला के ही तू खांदी आउंदी सी, अज की हो गई, बहुत भुख लगी। कहन लगे, नहीं, तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना, थानू बहुत खुशी हुई सी, ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है, पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया, है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है? हां संपूर्ण हो गया है, तुसी खुद ते कहे, और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने, मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने, वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गई ने। अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे, जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए, अश्चर्यता ते रहस्य दे चलीन हो गए। एकदम आग ते सुरूर तारी होया, अरदास कीती, हे त्रिभुवन धनी, हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा, ते मैं आप लिख लेंदा, ते खेचलां तुसी क्यों कीतियां? ता कहिंदन अलहाम होया, आकाश बाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच एक कमी पाई, खुद लिखिया ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जयदेव, अश्कबार हो बार बार सजदे च होए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का ये गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समोह दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण किया होया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरतलीन करिए, तो उस राम दी आप तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे दे परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरुष

0: ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਬਸੰਤਾ ਸਪੁਰਖਾ, ਜੋ ਪੁਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਆਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਮਨੋਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਪਨਾ ਮਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਪਿਮੰ ਮਨੋ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤਨ, ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਆਦਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤਨ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤਨ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਸਨੂੰ ਚਖੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਤੇ ਰਹਿਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਰਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜਿਤਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਸੀ, ਰਹਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਬੋਧ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਅਬੋਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਕੋਲ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਰਹਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਇਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੂਕਸ਼ਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਰਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, भगत जयदेव जी महाराज कहते ने परमद भूतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है, परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहते ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे हैं। रस्ते विच एक गंदगी का ढेर पिया, सवेर का वक्त है, सूरज दियां किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। इस सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दियां किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबू ते बाहर सारिया विच तू है, पर फिर भी सारिया तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करने दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां, हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जाती है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन पर मद भुतन पर कृत परन जद चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है परमात्मा दा नाम है उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगां चल के इसे ही पद वे श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं कि न दानोद जस सिमरने न जन्म जराद मरण भयं, नहीं आंदा जिदे सिमरन करन दे नाल जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ते जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदा। इत्थे एक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान, जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदियां उमंगा हुलास दे च कोई फर्क नहीं पैंदा, उदी चेते शक्ति दे च कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे चेहरे दे उत्ते ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे के उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हूं वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये कमजोर हो गया है, नहीं, उसका हुलास उसकी उमंग उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे देश फरमान कर देने, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं। इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनु इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करें जन्म मरण तो बचे ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। जस्वस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है। इसनु तू करन, इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने। अगर ए एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म ओ है जद हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जद शुभ दा चिंतन कीता जांदा है तो हिरदा शुभ हो जांदा है, ते जैसे हिरदा शुभ होंदा है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जांदा है। वो हर एक दी शुभ कामना करता है, वो हर एक दा शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है। कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम उसका जो शुभ कर्म है उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं भवभूत भाव समव्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमे हुए है व्यापक है, भवभूत भाव समव्यं जो हुण भी है पहले भी सी अगां भी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समव्यं परमन प्रसन्न मिदन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद बेचलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगा चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा। हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरिदा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है। जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है, दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत। हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन जय देव आयो तस्सु फटंग भवभूत सर्वगतंग। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप कर दें तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन दे च ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने। गोविंद दे सिमरन दे च ही लोक सवर जांदा है, परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

साधन भी बदल गए। त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ। जिंदगी का लक्ष्य जोरावर होना, ताकतवर होना, शक्ति होनी चाहिए। बाहां दे बाहुबल इतना होवे जैसे हजार बावां दे बल होंदा है। ऐसे नाम भी ने प्राचीन महापुरुषां दे, सहनसर बाहु, हजारां बाहां वाला। असी किधरे किधरे देवी देवतावां दे चार चार हाथ बनाए ने, अठ अठ हाथ बनाए ने, दस दस हाथ बनाए ने, और किसे दे दस दस सिर भी बनाए ने, दह सिर रावण। ना प्राकृतिक रूप दिच किसे दे दस सिर होंदे ने, ते ना ही दस हाथ होंदे ने। सिर दिच सोच शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होवे, चेते शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होवे, कई गुणा ज्यादा होवे। विचार शक्ति आम मनुखा नालों दस गुणा ज्यादा होवे, तो आपे दहसुर हो गया। ते दो बावां दी ताकत इतनी होवे जैसे हजारां बावां, ते हजारां बावां उसदे अधीन होवन, तो फिर सहनसर बाहू। बयान करन दे अपने ढंग ने, वरना एक शरीर दे हजार हाथ नहीं हो सकते। अगर हजार हाथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होवेगा, अगर दस सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुणा वड्डा होना चाहिए। नहीं, दस सिरां जैसी चेते शक्ति, दस सिरां जैसी सोच शक्ति, दस सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों दह सिर आख्या, दसां सिरां वाला। और जे दे दो हथ हजारां हथां नूं काबू कर सकन, अपने अधीन कर सकन, उसनों असी सहन सच बाहु करके आख्या। बयान करन दे ढंग ने जीवन दा लक्ष्य जद बन गया जोरावर होना, मेरे दो हत्थां दे बल हजारां हत्थां जैसा होवे। ताकत शक्ति जद जीवन दा लक्ष्य बन जाए तो मनुख अशांत हो जांदा। जीवन दे दो ही लक्ष्य हो सकदे ने, शांति या शक्ति। शांति प्राप्त करन दे साधन होर ने, शक्ति प्राप्त करने के साधन होर ने, और बिल्कुल विपरीत ने। त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा। तो फिर ताकत ते ताही हो सकती है शरीर दे जती होवे, और बाहर भी ताकत मनुख ता वधा सकता है संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन दा लक्ष्य जद ए बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन दा लक्ष्य ए बन जाए, तो फिर ओ त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रखवाओ। इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण इखलास, सत तो मुराद सच नहीं है, वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना, सुंदर आचरण वाला। पर बिना तप तो नहीं हो सकता, तपश तप की